अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: भगवान की
1: कन्द भगवान के श्री कौशल्यानंदन भगवान के श्री दशरथ नंदन भगवान के श्री कैकेयी नंदन भगवान के श्री सुमित्रानंदन भगवान के श्री चारो भैयन के श्री हनुमान जी महाराज के श्री राम जन्म भूमि के श्री कृष्ण जन्म भूमि के श्री काशी विश्वनाथ के श्री अयोध्या धाम के श्री सरयू महारानी के जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के समस्त पूर्वाचार्यों के सर्वसंत वैष्णव भगवान के सत्य सनातन धर्म के।

मुमुक्षुरुपा सकाभिमता नुरूपा गुणविभवैश्वर्यशीलाद्यनवधिका अतिशया संख्यकल्याण गुणगणाम् अप्रमेय कृपारत्नाकरम् भगवन्त

प्रस्तुत है श्री गोविंद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि संन्यास तथा कर्म हालांकि दोनों ही मुक्ति पथ को जाते हैं, फिर भी संन्यास अपेक्षा कर्म अधिक विशिष्ट कहलाता है। श्री गोविंद कहते हैं कि सांख्य दर्शन एवं कर्म अथवा भक्ति को एक समान समझने वाले ही वास्तव में ज्ञानी हैं।

मधुसूदन कहते हैं कि समस्त कर्मों के फल को ब्रह्म समर्पित करने से मानव फल बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि काम एवं क्रोध से उत्पन्न वेग को सह पाने वाले ही जीवन में सुखी रहते हैं। श्री कृष्ण योग विधि पर भी प्रकाश डालते हैं।

हर पड़ाव की मौन साक्षी है, जिसके तट पर शताब्दियों पहले सभ्यता का सूर्य उगा, धरती में जीवन के अंकुर फूटे, फसलें लहलहाई, मानव का आंचल सोने के दाने से भर गया।

0: वरुण के विवाह की एक सुंदर कथा आती है। कहते हैं सौवरण वरुण के अवतार थे। उन्हें ऋषि अगस्त के शाप से मणि जन्म ग्रहण करना पड़ा था। स्थानीय महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर श्यामकांत कुलकर्णी ने बताया,
1: पुराणों में एक ऐसा प्रसंग आता है कि अमृत मंथन के बाद वरुण देवता सुरा का कलश लेकर अगस्त ऋषि के आश्रम में ठहरे। ऋषि आश्रम में नहीं थे। वरुण ने मदिरा का जी भरकर पान किया और आश्रम की स्त्रियों के साथ रंग रेलिया मनाने लगे। ऋषि लौटकर आए तो इस उद्भट व्यवहार को देखकर क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने वरुण को शाप दे दिया, देवाधन तूने आश्रम की पवित्रता को खंडित किया है, जा मृत्युलोक में जन्म लेकर शापित जीवन बिता। वरुण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे मुनि से क्षमा याचना करने लगे। मुनि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, मेरा शाप मिथ्या तो नहीं हो सकता, परंतु यथा समय ताप्ती से तुम्हारा विवाह होगा और पुत्र जन्म के साथ तुम शाप मुक्त हो जाओगे। इस तरह वरुण को धरती पर आना पड़ा।
0: एक दिन महर्षि श्रृंग मेखल ने उन्हें सूर्य की तपस्या करने का उपदेश दिया।
2: मैं तुम्हारी उग्र तपस्या से प्रसन्न हुआ।
3: प्रभु, मैं कुरुवंशी राजकुमार ऋतुपुत्र संवरण आपको प्रणाम करता हूँ।
2: सफल मनोरथ हो, वरदान मांगो।
3: आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मुझे कुछ नहीं चाहिए।
2: हम और भी प्रसन्न हुए। मैं तुम्हें अपनी तेजस्वी कन्या ताप्ती का हाथ देता हूँ।
3: क्या
2: उसे सहधर्मिणी के रूप में स्वीकार करो।
3: मैं अनुग्रहित हुआ।

0: पर होता है। भक्तों ने यहाँ पर एक ताल बना दिया है। ये एक पवित्र तीर्थ है।
1: इस सरोवर का महत्व बताते हुए बैतूल महाविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर पांडे कहते हैं,
2: बैतूल जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर दूर स्थित मुल्ताई नामक शहर के मध्य के पवित्र जलकुंड से ताप्ती का उद्गम माना जाता है, किंतु वास्तव में मुल्ताई से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर 790 मीटर ऊंची सतपुड़ा की एक पर्वत श्रृंखला से यह नदी निकलती है।
1: मुल्ताई महाविद्यालय के हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर आलोक शुक्ल बताते हैं,
3: मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। यह 21 कल्प ताप्ती नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी की विशेषता यह है कि इसके किनारे बहुत सारे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं। यहाँ सात कुंड हैं।
1: मुल्ताई के वयोवृद्ध नागरिक रामजीराव बाबूराव पाटिल इस सरोवर के ऐतिहासिक संदर्भों की जानकारी देते हुए कहते हैं,
4: सन 1763 के लगभग जाने जी भोसले ने उस तालाब के निर्माण का कार्य हाथ में लिया। आज जो ताप्ती तालाब की पाषाण की सीढ़ियों से बना हुआ जो नैनाधिराम तालाब आपको दिखाई पड़ रहा है, वह वास्तव में जाने जी भोसले ने बनवाया था इस उपलक्ष्य में कि इस नदी के जल से मेरा रोग दूर हुआ है, इसलिए इस उपलक्ष्य में उन्होंने इसको बनाया था। यहाँ तात्या टोपे भी 1858 में आए थे। यहाँ के ब्राह्मणों को उन्होंने एक एक असरफी सोने की दक्षिणा में भी दी थी। अंग्रेजों को जब मालूम हुआ तो उन्होंने यहाँ आकर जिन जिन लोगों को उन्होंने असरफियाँ प्रदान की थी उन सब से वो असरफियाँ लेकर और उनको सजा भी दी थी।
0: कई लोग यहाँ पिंडदान करने भी आते हैं और यहाँ अस्थि विसर्जन कर अपने पितरों की आत्मा के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर

सदियों पहले आभीरों ने ताप्ती के तट पर बस्तियां बसाई। आभीर एक वीर आर्य जाति, गौरा रंग, ऊंचा कद, लंबी भुजाएं और चौड़ा वक्षस्थल। देखते ही देखते सारी उर्वर घाटी में उनकी बस्तियां फैल गई।

और बिगड़ते रहे, राज्य फैलते और सिकुड़ते रहे। सातवाहन और शकों में युद्ध हुए, शकों और आदिरों की तलवारें टकराई। चालुक्य और राष्ट्रकूट, यादव और यवन अपनी अपनी सत्ता के संघर्ष करते रहे।

0: भी खड़ा है, निश्चल और अधिक।
1: जिसकी एक एक दीवार खांडिस के गौरव में अतीत की कहानी कह रही है, जिसका एक एक पत्थर संतपाल चौहान और इष्टपाल हांडा के शौर्य की गाथा गा रहा है।
2: ये मिट्टी हमारी माँ है, हमारा गौरव है, हमारा सर्वस्व है। आज इसकी रक्षा में प्राण देने की घड़ी आ गई है। बोलो, तैयार हो?
3: हम सब तैयार हैं।
2: हम खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे,
3: जरूर लड़ेंगे।
2: सिल सिल कट जाएंगे पर घुटने नहीं टेकेंगे,
3: घुटने नहीं टेकेंगे।
0: खानदेश की धरती पर ताप्ती की लहरों को छूता हुआ एक और किला है थालनेर।

उर्जाबाद के पास जहाँ पूर्णा नदी ताप्ती के प्रवाह में आकर मिलती है वहाँ विद्यमान है चांगदेव महाराज की समाधि। कहते हैं चांगदेव एक शापित मरुदगण थे जिन्हें संत ज्ञानेश्वर की कृपा से पुनः परम पद प्राप्त हुआ था। हर वर्ष यहाँ मेला लगता है सारा।

0: उसके महत्व का वर्णन करते हुए राजलोक भट्ट कहते हैं,
1: प्रकाश ठाकुर उसको प्रतिकाशी कहा है। प्रतिकाशी इसलिए कि बनारस वगैरह या तो फिर अपने पूरे भारत वर्ष के अंदर पुष्प दंतेश्वर नामक महादेव का दर्शन भक्तजनों को कहीं भी मिलता नहीं है। कोई भक्तजन यहाँ आकर के लेते हैं और कृतार्थ होते हैं। और ऐसा कहा जाता है इधर या तो अपने पूरे भारत वर्ष में कि भाई तीर्थ यात्रा तो अपन ने की, लेकिन यहाँ प्रकाशिया चलो।

जो कुछ भी थोड़ा बाकी है वो मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं और नानाधिक कर्म करके पहले पुष्पदंतेश्वर भगवान का महादेव का दर्शन लेते हैं। संस्कृत में तापी के बारे में जो कुछ भी बताया है तापी महात्मा के अंदर, तो गुप्तेश्वर प्रकाशाया राम क्षेत्र च सुंदरी, गुप्तेश्वर प्रकाशाया राम क्षेत्र च सुंदरी सर्वत्र दुर्लभा तापी त्रिशु स्थाने विशेषतः।

0: ताप्ती का मंदिर है। यहाँ 12वें वर्ष सूर्य पर्व पर मेला लगता है। ताप्ती महात्म्य का पारायण किया जाता है।
1: तो सज्जनों, गंगा ने धरती पर आना तो स्वीकार कर लिया, परंतु उसने शंका प्रकट की कि धरती पर ताप्ती जैसी पवित्र नदी के रहते मुझे कौन पूछेगा। गंगा का प्रश्न सुनकर शंकर भगवान ने नारद मुनि को आज्ञा दी कि जाओ और ताप्ती का महात्म्य हर लाओ। नारद आए, परंतु उन्हें चोरी का कलंक लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ताप्ती ने स्वयं अपना महात्म्य ताक दिया, उसे पानी में प्रवाहित कर दिया और इस प्रकार सज्जनों गंगा धरती पर आ गई। बोल ताप्ती माता की जय।
2: जिस प्रकार प्रकाशा में तीन धाराओं का संगम है, उसी प्रकार ताप्ती का ये प्रदेश तीन संस्कृतियों का संगम है।
0: बनों और पर्वतों में इतना की बल खाती श्वेत शुभ्र धारा सूर्य धारा समतल प्रदेश में पहुँच कर विस्तृत नदी का रूप धारण कर लेती है और तब शुरू होती है उसकी लोक साधना।

0: देश के लिए समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। उदय के शेषराव गावंडे इसका विवरण देते हुए कहते हैं,
1: नेपाल के पूर्वी भाग में करीबन 6-7 मील दूरी पर डोरगांव के समीप अर्थात किशनबा के पास करीबन 30 मील के क्षेत्र में कोयला देवता के रूप में पत्थरों में चमकीले संकर पाए जाते हैं तथा रवेदार चमकदार पत्थर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर कुआ भी खोदने से कोयले की मात्रा अभ्रक निकलता रहता है और तापी के जल में बहुत आयत रूप से कैल्शियम और आयरन की मात्रा अधिक है।
0: तापी के प्रवाह पर कई छोटे बड़े बांध बांधे गए हैं जिनमें सबसे पहले आते हैं हरिया झीटू और नवासा। इन बांधों से निकली नहरों ने किसानों के जीवन में नई क्रांति ला दी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों का 1.25 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र इन सिंचाई परियोजनाओं से लाभान्वित हुआ है। बैतूल के मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के तंत्री इंद्र सिंह गौड़ ताप्ती के जल ग्रहण क्षेत्र की जानकारी देते हुए बताते हैं,
2: ताप्ती नदी की लंबाई उद्गम स्थान से संगम तक 723 किलोमीटर है। उसमें से मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 332 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 217 किलोमीटर और गुजरात में 175 किलोमीटर है। निर्मित 20 लघु योजनाओं से 905 हेक्टेयर इरिगेशन होता है। इस निर्माणाधीन 18 लघु सिंचाई योजनाओं से 5400 हेक्टेयर इरिगेशन होगा। प्रस्तावित एक वृद्ध सिंचाई योजना और 45 लघु सिंचाई योजनाओं से 37200 हेक्टेयर में इरिगेशन होगा।

0: जिले का लोअर ताप्ती प्रकल्प लगभग 40,000 हेक्टेयर जमीन को सुजलाम सुफलाम होने का वरदान देता है। ताप्ती जल विकास परिषद के अध्यक्ष पीके अन्ना पाटिल कहते हैं,
1: कई साल से ताप्ती का पानी यूज हो रहा नहीं था, अब इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था कि जिसको ताप्ती बसिन बोलते हैं। उस ताप्ती बसिन का अगर विकास करना है तो ताप्ती और उसके प्रभुत्व का पानी इस्तेमाल करने के सिवा इसका विकास हो नहीं सकता है। अब हम पानी के इस्तेमाल के लिए तो डैम्स बनाएंगे खुड़िया घाटी में।

0: अपर तापी लोअर तापी इसमें डैम बना के उनका वितरण करेंगे। जो हम उनको हम एक प्रस्ताव देंगे वो इस विकास के लिए तापी अथॉरिटी क्रिएट की जाए। इस अथॉरिटी के हिसाब से 10 साल के अंदर इसका पूरा विकास हो सके, पानी का इस्तेमाल हो सके।
1: गुजरात में प्रवेश करते न करते तापी का प्रभाव एक विशाल महानद बन जाता है। भोकर, भोर,

उकाई काकरा पारा जैसे बड़े बांध सिंचन की सुविधाओं से ग्रामीण जीवन को संपन्न बनाते हैं और जल विद्युत परियोजनाएं खेतों खलिहानों और कल

0: कहा जाता है।
1: उकाई बांध के कई देश हैं, जैसे कि सिंचाई, बिजली उत्पादन, मछली पालन और सबसे महत्वपूर्ण वायु नियंत्रण। उकाई बांध से सीधा 152,000 हेक्टेयर की सिंचाई होती है। इसके अलावा उकाई बांध से काकरा पर यह पूरी पानी दिया जाता है, जिससे 227,500 हेक्टेयर की सिंचाई होती है। इस योजना से सूरत, बलतार और भरूच जिला के अधिकांश भाग लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा 300 मेगावाट पनबिजली भी तैयार की जाती है। प्रतिवर्ष 5,000 टन मछली का उत्पादन किया जाता है।
2: उकाई बांध मशीनरी विभाग के उप कार्यकारी अभियंता आर जे मंडालिया बांध के विषय में और जानकारी देते हुए कहते हैं,
3: कई जलाशय में गुरुत्तम पानी की संग्रह शक्ति 6.9 मिलियन एकर फीट की है और जिसमें से 5.75 मिलियन एकर फीट पानी का उपयोग सिंचाई और बिजली के लिए किया जाता है। उकाई बांध की लंबाई 5 किलोमीटर है। उकाई माटी बांध की महत्तम ऊंचाई 68 मीटर है और पक्का बांध की महत्तम ऊंचाई 80 मीटर है। हल्ती बांध में 22 दरवाजे लगे हैं, जिनके द्वारा 18 लाख घन फुट प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा सकता है।
2: ताप्ती के अंतिम पड़ाव पर स्थित है सूरत, गुजरात का स्वर्ण नगर सूरत, जिसने इतिहास देखा ही नहीं बल्कि इतिहास का स्वयं निर्माण किया है। मुगलों के आक्रमण से लेकर स्वतंत्रता संघर्ष तक की असंख्य गौरव गाथाएं जिसकी गलियों में गूंजती रही हैं, सोनगढ़ और सूरत के गढ़ जिसके पहरेदार रहे हैं। सूरत के एनटीबी आर्ट्स कॉलेज के इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहन मेघानी बताते हैं,
4: प्राचीन काल में या मध्यकालीन समय में सोलंकियों की तो सत्ता इधर थी ही, उसके बाद में जब स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई यानी सन 1411 के बाद, तब पहले हमें इतिहास में ऐसी जानकारी मिलती है कि जो यहाँ का सुल्तान मुजफ्फर शाह सतन था, उसका पुत्र मस्ती खान यानी सूरत और रामदेव का गवर्नर था, ऐसा उल्लेख मिराते सिकंदर में सर्वप्रथम हमें मिलता है।
2: प्रोफेसर मेघानी सूरत के किले की सुदृढ़ता का वर्णन करते हुए कहते हैं,
4: आफ्टर 1573 यानी 1573 के बाद मुगलों की सत्ता हुई, अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात पर अपनी सत्ता स्थापित की, उसके बाद उस सूरत का पूरा को पूरा व्यापारी कारोबार या एडमिनिस्ट्रेशन सब मुगलों के द्वारा चला। यह सिलसिला इसी सन 1759 तक चला। उसके बाद में किले पर अंग्रेजों ने कब्जा किया और तब तक मुगलाई चली, तो अकबर ने पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सूरत को बनाया था 1573 के बाद, तो उसमें क्या था कि सिटी में 2 गवर्नर थे और दोनों की सत्ता समान थी, दोनों एक दूसरे पर निगाह रखता था। किले का अलग गवर्नर था, उसका काम किले का रक्षण और तापी का रक्षण और लेवल बेस को संभालना था, और दूसरा शहर का गवर्नर था।
2: किले के निर्माण के संबंध में वे बताते हैं,
4: सल्तनत काल में मोहम्मद तृतीय करके जो सुल्तान था, उसके टाइम में सूरत का गवर्नर था खुदावन खान उर्फ ख्वाजा सफर सलमानी, तो उसने पोर्चुगीजों की

0: फील्ड के सामने यानी पोर्तुगीजों के हमले के सामने सूरत सिटी का रक्षण करने के लिए इस किले का निर्माण कराया था 1540-41 में। और कहते हैं कि वो किला इतना मजबूत था कि अकबर को भी इस किले को लेने के लिए 1 महीना और 17 दिन लगे थे।
1: सूरत जो अपनी संपत्ति और समृद्धि से सदा से संसार को ललचाता रहा है, उसका सांस्कृतिक महत्व बताते हुए बाईस बहादुर वाई वाला।
0: सूरत उसका पुराना नाम सूर्यपुर है, इसके आगे रांदेर था। सूर्य पत्नी का नाम रांदल और रांदल का जो स्थान है वो रांदेर में है। और सूर्य की तपोभूमि सूर्य के पास कतार गांव बोला जाता है, वहां पर सूर्य ने तप किया ऐसी बात है। और सूर्यपुर का अश्विनी कुमार यहाँ पर पढ़े, वो अश्विनी कुमार नाम अभी भी है।
1: इस आकर्षण में ही उसे दिए हैं असंख्य घाव। यही से शिवाजी को मिला था अपार खजाना, यही से फिरंगी अपना विश्वव्यापी व्यापार संचालित करते थे। दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष हीरालाल गांधी कहते हैं,
2: सूरत को कहा गया है सोने की मूरत। सूरत मोगल शाही जमाने में एक अच्छा सा बंदर था, वही आकर्षण की वजह से पहला ब्रिटिश जहाज सूरत में आया और सूरत से आयात निर्यात का व्यापार कई सदियों पहले हो रहा था। सूरत में है मक्काई पुल, सूरत में है मोगल सराय जहाँ से हज के लिए मक्का जाने के लिए ये बंदर था।
1: आधुनिक भारत के औद्योगिक विकास में भी सूरत का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रमेश गजीवाला बताते हैं,
3: सूरत में जो विकास हुआ उसमें कृषि आधारित उद्योगों का हुआ। वो कृषि आधारित उद्योगों में पेपर मिल, कैटल फीड, डैम, फिशिंग एंड मरीन इंडस्ट्री का विकास उसमें हुआ। वो खास करके सूरत के आदिबाजू के विस्तार में हुआ। दूसरा जो छोटा इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको बोला जाता है और विकेंद्रित क्षेत्र में है, वो टेक्सटाइल। आज कम से कम सूरत में 3 लाख पावर लूम काम कर रही है। रासायनिक उद्योग में कम से कम सूरत में 400 यूनिट हमारे यहाँ है। ये डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री सूरत में बड़ी जोरों से चल रही है। 3 लाख आदमी उसमें रोजी पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो डायमंड है वो अमेरिका, बेल्जियम, इंग्लैंड, जापान और हांगकांग में भारत से जा रहे हैं।
1: ताप्ती तट के मेलों और उत्सवों में पारंपरिक रचना

0: ऊंचाइयों को छुआ है। गुजरात के साहित्यकार भगवती कुमार शर्मा बताते हैं,
1: गुजराती साहित्य के जो पहले अर्वाचीन कवि हुए, कवि नर्मद, जो सूरत के थे, गुजराती भाषा का जो पहला उपन्यास नॉवेल लिखा गया करण घेलो, वह भी सूरत में लिखा गया, और उसके लेखक नंद शंकर तुलजाराम मेहता भी सूरत के थे। गुजरात के ख्याति प्राप्त, मैं कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नाट्यकार जो हुए चंद्रगदन मेहता, वो भी सूरत के थे और सूरत में पैदा हुए, उनकी परवरिश भी हुई।
2: प्राप्ति के तट पर स्वतंत्रता का भी उद्घोष हुआ। सूरत जिला तो इस क्षेत्र में सबसे आगे रहा है। बास बहादुर सवाई वाला कहते हैं,
3: महात्मा गांधी जी ने सूरत के पादरी आश्रम में कहा था कि मैं ये ब्रिटिश की जड़ उखड़ने वाला हूँ। गांधी को भी सूरत दिल्ली में हुई और बारगोली का सत्याग्रह पहला हुआ और उसने विजय पाई।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ

0: ಕಾಗದ ಕಾಗದ ಬರುವ
1: ಅಂತರ ಚೀರು ಕಾಗದ.

cagada, mano vayo. Antara quiero cagada, mano vayo. Apanito.

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, किंतु उसने त्रिलोक स्वामी शिव तथा देवी सती को आमंत्रित नहीं किया। महादेव की अनुमति से देवी सती इसका कारण जानने दक्ष यज्ञ में गईं। अभिमानी दक्ष ने यज्ञ स्थल पर उनका भी अपमान कर डाला। महर्षि दधीचि के नेतृत्व में अनेक ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु दक्ष टस से मस न हुआ। पति के अपमान से आहत हो देवी सती ने अपनी देहाहुति दे दी। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसने दक्ष और दक्ष यज्ञ विनाश की घोषणा की। प्रस्तुत है इसके आगे का प्रसंग। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: परम ज्ञानी सूद जी, जो भी हो, धन्य है देवी सती। उन्होंने समस्त स्त्री वर्ग के लिए पतिव्रत धर्म का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि एक पतिव्रता को पति निंदा सहन नहीं होती है। वो प्राणों पर खेल कर भी अपने पति के सम्मान की रक्षा करती है।
2: शौनक जी, देवी सती की महानता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि उन्होंने पति से मानसिक रूप से त्यक्त होने के बाद भी ऐसा किया।
1: हाँ सूत जी महाराज, मानसिक रूप से विलग रहने के उपरांत भी शिव और सती कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए, दाम्पत्य जीवन का आदर्श उदाहरण बने रहे।
2: और इसी कारण देवी सती से ये विछोह भगवान शिव के लिए असहनीय हो गया। दंभी दक्ष के प्रति उनका क्रोध आकाश छूने लगा। उन्होंने अपनी एक जटा से अपने ही विकराल स्वरूप वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया।
3: दक्ष का ये दुस्साहस, वीरभद्र।
4: आज्ञा महाप्रभु।
3: जाओ दक्ष और दक्ष यज्ञ का विनाश कर डालो।
4: जो आज्ञा महादेव।
3: महाकाली।
5: आदेश देवाधिदेव।
3: तुम काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन सभी नव दुर्गाओं के साथ यज्ञ विनाश में वीरभद्र का साथ दो।
5: आपकी आज्ञा शिरोधार्य है जन्मदाता।
3: और तुम नंदीश्वर।
6: जी महाप्रभु।
3: हमारे समस्त गणों का नेतृत्व करते हुए वीरभद्र का सहयोग करो।
6: आज्ञा पालन होगा देव।
3: वत्स वीरभद्र, जाओ सहस्त्र सियों से जुते हुए इस रथ पर आरूढ़ हो सेना का नेतृत्व करो। जाओ मेरे गणों, विजयी होकर लौटना।
7: देवाधिदेव महादेव की
8: जय।
7: देवाधिदेव महादेव की
8: जय।
7: देवाधिदेव महादेव की
8: जय।
9: भोले भंडारी की
8: जय।
9: भोले भंडारी की
8: जय।
10: हमारे स्वामी का अपमान करने वाले दक्ष, हम आ रहे हैं।
11: बम बम भोले, बच सकता है तो बच।
5: महादेवी की बलिदान स्थली को हम रक्त रंजित कर देंगे।
8: रक्त रंजित कर देंगे।
12: रक्त रंजित कर देंगे।
13: अरे ये क्या अचानक मेरा बायां हाथ क्यों फड़कने लगा? ये भूमि क्यों डोलने लगी?

0: इस संपूर्ण आकाश में उथल पुथल मच गई है। ओ, ओ, ओ, ये कैसे भयावह चक्र सूर्य मंडल को घेरे जा रहे हैं। बादलों के बिना ही ये बिजली कैसे कौंधे लगी। अवश्य ही कोई विपदा आने वाली है, कोई विपदा आने वाली है। बिजली कैसे कौंध रही है।
1: अधिपति दक्षराज, अधिपति दक्षराज, रुद्र सेना ने आक्रमण कर दिया है।
0: क्या
2: कौन है यहाँ जो शिव शक्ति का सामना कर पाएगा।
3: हम भभूत धारी हैं, सत्य है, हम भभूत धारी हैं। आज तुम्हारी देह की भस्म ही हमारा भभूत बनेगी। शिव निंदको, बच सकते हो तो बचो।
2: अरे अरे देखो, वो दक्ष मृग का भेष धारण करके भागा जा रहा है।
3: अरे शहर रे ज्ञानहीन दक्ष, तेरा सिर अभी धड़ से अलग करता हूँ।
4: वो देखो वीरभद्र, ऋषियों को भ्रमित करने वाला, ब्राह्मणत्व को कलंकित करने वाला भृगु उस वृक्ष के पीछे जा छिपा है।
3: अभी उसको उसकी नियति तक पहुंचाए देता हूँ।
4: हे शिवरूप वीरभद्र क्षमा, शिव अवहेलना कर मुझसे अपराध हो गया, क्षमा। हे शिव शंकर क्षमा।
3: तुमने मेरे स्वामी से क्षमा याचना की है, इस कारण मैं तुम्हें मृत्यु भय से मुक्त करता हूँ, किंतु दंड तो अवश्य ही दूंगा। मैं तुम्हारी जटाओं को ही उखाड़े डालता हूँ।

0: नहीं पुत्र दक्ष, तुम्हारी रक्षा अब किसी के सामर्थ्य में नहीं है। मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूं, यह समझ तुमने अपने आप को परम ब्रह्म मान लिया। भूल गए कि परम ब्रह्म कौन है? स्वयं तुम्हारे इस पिता और भगवान विष्णु के जन्मदाता भगवान शिव हैं।
1: परंतु पितामह, आपके बल पर ही मैंने इस यज्ञ का आयोजन किया था।
0: यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं शिव तथा विष्णु से भिन्न हूं? तुमने अपने मानस में ही सही हंत्र देवों को विभाजित करने का पाप किया है। इसका फल तो तुम्हें भुगतना ही होगा।
1: आप मेरे पिता हैं।
0: दक्ष, पिता परमेश्वर से बड़ा नहीं होता है। जाओ भगवान विष्णु की शरण में जाओ। कदाचित वही कोई उपाय बता सके, परंतु इसमें भी हमें संदेह है।
1: जैसी आज्ञा पितामह। त्रैमाम विष्णुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। शिवगणों ने प्रलय मचा रखी है, हर ओर विनाश ही विनाश हो रहा है। प्रभु रक्षा कीजिए।
2: दक्ष, इस विनाश को तुम्हारे अहंकार ने ही आमंत्रित किया है। शिव तत्व से विमुख होकर तुम भूल गए कि क्या कर्म है और क्या अकर्म। जो शांत मन से ईश्वर की भक्ति करते हुए कार्य करता है, प्रभु शंकर तुरंत ही उसके कर्म का फल देते हैं। परंतु जो मनुष्य ये मानता है कि वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, ईश्वर को भुला देता है, वो प्रभु के तिरस्कार का पात्र बनता है। तुमने देवी सती का अपमान किया है, इससे बड़ा कुकर्म और क्या हो सकता है?
1: परंतु श्रीहरि,

0: मैं आपका भक्त हूं।
1: हम तीनों देव तो सदा ही भक्त के अधीन रहते हैं। भक्त की भक्ति हमारे चित्त को प्रसन्न करती है, हमारे मानस को शांति प्रदान करती है, और इसी भक्ति के अधीन हो हम तीनों भक्त के अनुरोध पूरे करते हैं। जो भक्त सुख दुख दोनों ही में हमें स्मरण करता है वो सदा ही हमारा कृपा पात्र बनता है।
0: हे प्रभु, आज आपका भक्त अपनी प्राण रक्षा का अनुरोध कर रहा है। भक्त वत्सल, भगवान विष्णु।
1: अरे दक्ष, प्रभु शिव से बड़ा भक्त वत्सल कौन हो सकता है? ऐसे विकट और विषाद पूर्ण समय में भी उन्होंने अपने इस भक्त अर्थात मुझे श्राप मुक्त करने की लीला रच डाली। मैं वीरभद्र से युद्ध करूंगा दक्ष, परंतु तुम्हारा पक्षधर बनकर नहीं, उस महाप्रभु की आज्ञा से जो सदा अपने भक्तों का कल्याण ही सोचते हैं।
2: महाज्ञानी शौनक जी, भगवान विष्णु तथा वीरभद्र के बीच घमासान हुआ। परिणाम प्रभु जानते थे। वीरभद्र ने उनके सुदर्शन चक्र को स्तंभित कर दिया, उनका शरीर अस्त्रों से आच्छादित कर दिया। पराजित भगवान विष्णु शिव का स्मरण करते हुए अंतर्धान हो गए। शिव महिमा ने उन्हें दधीची के श्राप से मुक्त कर दिया था।
3: महाभाग सूत जी, क्या दधीची ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था? कब, कैसे?
2: प्राचीन काल में क्षुव नाम के एक महातेजस्वी राजा थे। वो और मुनीश्वर दधीची बड़े अच्छे मित्र थे, परंतु एक बार दोनों में विवाद छिड़ गया। क्षुव का कहना था कि क्योंकि राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है, इसलिए वही श्रेष्ठ होता है।
3: और महर्षि दधीची का क्या विचार था?
2: शौनक जी, शिव भक्त दधीची कहते थे कि ब्राह्मण प्रभु के निकटतम है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि धन वैभव से मदमत क्षुव ने मुनि दधीची का शरीर अपने वज्र से काट डाला। गिरते गिरते दधीची ने योगी शुक्राचार्य का स्मरण किया।
4: हे शिव भक्त शिरोमणि मृत्युंजय विद्या प्रवर्तक शुक्राचार्य, इस ब्राह्मण की रक्षा करो, रक्षा करो।
5: अरे अहंकारी राजन क्षुव, तुझे अपने धन वैभव बल पर बहुत अभिमान है। आ, एक एक ब्राह्मण अपने तप बल से क्या कर सकता है? तूने क्षण भर में एक ब्राह्मण के टुकड़े तो कर डाले, परंतु क्या तू इन्हीं टुकड़ों को पुनः जोड़ सकता है? नहीं, किंतु एक शिव भक्त ब्राह्मण ऐसा कर सकता है।

0: मैं धन्य हुआ मुनि शुक्राचार्य, मैं धन्य हुआ आपके इस मंत्रोच्चारण से। मुनिवर, मेरे सभी अंग पूर्ववत हो गए हैं। मुनिवर, ये कौन सा मंत्र है?
1: तात दधी जी, ये श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय मंत्र है।
0: मुनिवर शुक्राचार्य, आप मुझे इस मंत्र का महात्म्य समझाइए।
1: अवश्य भृगुवंशी दधी जी, सुनो। त्र्यंबकम यजामहे, अर्थात हम भगवान त्र्यंबक की आराधना करते हैं। मुनि दधीच, त्र्यंबक और कोई नहीं, स्वयं त्रिलोकी शिव हैं। वे सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों महान ईश्वर महादेव ही हैं।
0: और मुनिवर, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम

0: क्या अर्थ हुआ?
1: जैसे फूल में उत्तम गंध बसी रहती है, वैसे ही सभी भूतों, गुणों, कृत्यों, इंद्रियों, देवों तथा गणों की आत्माओं में प्रभु शिव बसे रहते हैं। वे अंतर्यामी शिव ही प्रकृति का पोषण करते हैं। महातत्व से लेकर संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि उन्हीं के द्वारा होती है।
0: यही सत्य है ब्राह्मण शुक्राचार्य, यही सत्य है।
1: और मुनि दधीचि, उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर मुक्षिये मामृतात्। अर्थात, हे प्रभु, जैसे फल पक जाने पर अपनी लता से छूट जाता है, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो जाऊं, मोक्ष को प्राप्त करूं। महर्षि दधीचि, यही मृत्युंजय संजीवनी मंत्र है।
0: गुरु शुक्राचार्य, क्षोभ ने समस्त ब्राह्मण वर्ग का जो अपमान किया है, उसका प्रतिकार कैसे लिया जाए?
1: मुनि श्रेष्ठ दधीचि, शिव चिंतन कीजिए और उनसे वरदान प्राप्त कीजिए। हम जाते हैं मुनिवर, आप शिव आराधना में लीन होइए।

0: देवाधिदेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ।
1: वर मांगो भक्त शिरोमणि दधीचि।
0: प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 3 वर दीजिए। पहला, मेरी अस्थियां वज्र हो जाए, और प्रभु दूसरा, कोई मेरा वध ना करने पाए, और प्रभु तीसरा वर मुझे ये दीजिए कि मुझ में कभी दीनता ना आए।
1: तथास्तु
0: प्रभु।
2: महामुनि शौनक जी, ये 3 वर प्राप्त करने के पश्चात ऋषि दधीचि राजा क्षुव के पास गए और राजेंद्र क्षुव के मस्तक पर प्रहार किया। क्रोध में आकर क्षुव ने एक बार फिर दधीचि पर वज्र प्रहार किया, परंतु शिव वरदान के कारण उसका कुछ प्रभाव ना हो पाया।
3: परम ज्ञानी सूत जी, इससे क्षुव तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ होगा।
2: हाँ शौनक जी, राजा क्षुव तुरंत ही भगवान विष्णु के पास गए, उनसे अपने साथ चलकर दधीचि का गर्व भंग करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, कहा कि शिव भक्त ब्राह्मण किसी से नहीं डरता।
3: तो क्या क्षुव भगवान विष्णु की बात भी नहीं माना?
2: नहीं शौनक जी, क्षुव अपनी जिद पर अड़ा रहा कि विष्णु उसके साथ जाकर दधीचि से एक बार ये कहलवा दें कि दधीचि क्षुव से डरते हैं।
3: फिर क्या हुआ मुनिश्रेष्ठ?
2: भगवान विष्णु ने क्षुव से कहा कि उनका क्षुव के साथ जाकर उसका पक्षपात करना दधीचि को दुख पहुंचाएगा, और महर्षि का ये दुख क्रोध का रूप लेकर विष्णु के लिए श्राप का कारण भी बन सकता है। मगर फिर भी विष्णु भक्त के अधीन थे, वे अकेले ही ब्राह्मण का रूप धरकर महर्षि दधीचि के आश्रम में जा पहुंचे।

0: देही।
1: आइए मुनिवर, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है, आज्ञा करें।
0: हे परम शिव भक्त अविनाशी दधीची, मुझे एक वर दें।
1: ब्राह्मण का रूप धरे भगवान विष्णु, आप मायावी अवश्य हैं, परंतु शिव कृपा से मैं आपको पहचान गया। हे पापाहारी भगवान, आप ये वेश त्यागिए और असली रूप में दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कीजिए भगवान।
0: हे सर्वज्ञ दधीची
1: भगवान,
0: मेरा एक अनुरोध स्वीकार कीजिए। राजा क्षुभ से मात्र इतना कह दीजिए कि हे राजन, मैं तुम

0: तुमसे डरता हूँ।
1: प्रभु,
0: राजा ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। मेरे भक्त का मन रखने के लिए इतना भर कर दीजिए।
1: प्रभु, आपकी भक्त वत्सलता का मैं आदर करता हूं, किंतु असत्य का साथ मैं कभी नहीं दूंगा। भगवान, आपके इस व्यवहार से मुझे ठेस पहुंची है। मैं आपको श्राप देता हूं। दक्ष यज्ञ में आप शिव गणों से ही युद्ध करने पर बाध्य हो जाएंगे।
0: महर्षि, आपने ये क्या श्राप दे डाला? अपने ही प्रभु के गणों से युद्ध? ये तो बहुत बड़ा पाप होगा।
1: उसी युद्ध में शिव कृपा से आप मेरे श्राप से मुक्त भी हो जाएंगे। भगवान,
2: अच्छा तो ये रहस्य था भगवान विष्णु के युद्ध में भाग लेने का।
3: हाँ विप्रवर शौनक जी, युद्ध में पराजय के पश्चात भगवान विष्णु शिव लीला के कारण श्राप मुक्त भी हो गए।
2: इस प्रसंग में हमें दक्ष का तो स्मरण ही नहीं रहा, उसका क्या हुआ मुनि श्रेष्ठ?
3: सबकी पराजय के पश्चात वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे वहीं अग्नि कुंड में होम कर दिया। सभी शिवगण विजय का उल्लास मनाते हुए कैलाश लौट गए।
2: महाभाग सूत जी, फिर तो सब कुछ नियमित रूप से चलने लगा होगा?
3: नहीं शौनक जी, दक्ष विनाश के बाद सृष्टि में मानव उत्पत्ति रुक गई। इससे ब्रह्मा और विष्णु बहुत चिंतित हुए। वे सभी घायल और क्षत विक्षत देवताओं के साथ भगवान शिव की शरण में पहुंचे।
4: हे देवाधिदेव, हम पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है, हमें इससे उबारिए महाप्रभु।
5: कहिए विदात, क्या चाहते हैं?
4: हे करुणानिधि, आप ही के आदेश से मुझे और श्रीहरि को संसार में जीवन का उत्पादन और पालन करना है। परंतु प्रभु, प्रजापति दक्ष की मृत्यु के बाद जीवों की उत्पत्ति रुक गई है, जो जीव बचे हैं वे नष्ट हो रहे हैं।
0: हे दया सिंधो, आप सदा हम भक्तों की विपत्तियां दूर करते आए हैं, आज भी हमारी सहायता कीजिए देवाधिदेव।
5: विष्णु हरे, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं?
0: शंभो, आप प्रजापति दक्ष को जीवन दान दें ताकि मानव उत्पत्ति फिर आरंभ हो सके, सृष्टि का कार्य फिर सुचारू रूप से चलना आरंभ हो जाए।
5: विधात, श्रीहरि, दक्ष का विध्वंस मैंने नहीं किया है, ये उसके अपने कर्मों का ही फल है। कभी किसी को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। परंतु हे ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों की बात मैंने कभी नहीं टाली है, क्योंकि आप सदा जन कल्याण का ही सोचते हैं। आइए हम सब दक्ष की यज्ञ स्थली कनखल चलते हैं। नंदीश्वर,
6: आज्ञा प्रभु।
5: दक्ष के शरीर को यहां लाओ।
6: अभी लीजिए प्रभु, दक्ष शरीर प्रस्तुत है प्रभु।
5: परंतु इसका सिर कहां है?
7: महाप्रभु, उसे तो मैंने उसी समय अग्नि में होम दिया था।
5: नंदी,
6: हाँ,
5: यज्ञ पशु बकरे का सिर लाओ।
6: लीजिए स्वामी।
5: दक्ष, मैं तुम्हें पवित्र बकरे का सिर प्रदान करता हूं।
8: क्षमा क्षमा महाप्रभु, मैंने विष भरे शब्दों से आपका हृदय बींध डाला, देवी सती के आत्मदाह का कारण बना, फिर भी आप मुझ भक्त पर अनुग्रह करने यहां आए, मुझे जीवन दान दिया, मेरा अपराध क्षमा करें महादेव, मुझे पुनः अपनी शरण में ले प्रभु।
5: प्रजापति दक्ष, मैं ईश्वर हूं और स्वतंत्र हूं, फिर भी अपने भक्तों के अधीन रहता हूं।

0: मैं, ब्रह्मा और विष्णु एक ही हैं दर्श। जो हम त्रिदेवों में भेद करता है वो नरक का भागी होता है।
1: दक्ष, जो अपने को मेरा भक्त मानकर शिव निंदा करता है अथवा शिव भक्त होकर मेरी निंदा करता है, उसे निश्चय ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती।
2: और पुत्र दक्ष, जो हम तीन संपूर्ण जीव रूप देवताओं में भेद नहीं रखता, उसे अवश्य ही सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है।
0: हम तीनों में ना भेद संभव है ना होगा। जो ये मानकर कर्म करेगा उसे मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
3: भगवान, मैं इस शिव तत्व को सदा स्मरण रखूंगा। देवाधिदेव, ये संदेश अपनी समस्त प्रजा में प्रचलित करूंगा।
0: दक्ष, आयुष्मान भव।
4: मुनिवर सूत जी, इस प्रकार दक्ष के अपराध को क्षमा कर उसे फिर से जीवित कर भगवान शंकर कैलाश पर जाकर गहन तपस्या में लीन हो गए। महाप्रभु की कृपा से ब्रह्मा और विष्णु भी प्रसन्न हो अपने अपने धामों को लौट गए। सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा।
5: महामुनि सूत जी, देवी सती ने तो अपने प्राण त्याग दिए, फिर ब्रह्मा जी का कथन कैसे पूरा हुआ?
4: कौन सा कथन शौनक जी?
5: यही कि कुछ असुरों के विनाश के लिए शिव पुत्र की उत्पत्ति आवश्यक है।
4: वो प्रसंग भी आप अवश्य सुनेंगे विप्रश्रेष्ठ शौनक जी।
5: कौन सा प्रसंग प्रभु?
4: पार्वती जन्म का प्रसंग, परंतु कुछ समय पश्चात।
5: जैसी आपकी इच्छा मुनिवर सूत जी।

दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

हाथ जोड़ राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

अब धनुष यज्ञ का समाचार सुनते ही मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ ले जनकपुर की ओर चल देते हैं।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज हम आपको इस विशेष नाटक की चौथी कड़ी सुनवा रहे हैं। पिछली कड़ी में आप माता कैकेयी के हठ और कोप भवन का प्रसंग सुन चुके हैं। वचन से आबद्ध पिता के सम्मान के लिए प्रभु श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन गमन की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करते हैं और सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर अयोध्यापुरी की समस्त जनता को रोता छोड़कर चले जाते हैं। अब सुनिए आगे।

0: तमसा नदी के तट पर शोक और थकान के कारण सब लोग सो गए। दो प्रहर रात्रि बीत जाने पर रथ के निशान छिपाते सीता और सचिव के साथ दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे।
1: प्रभु के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम।
2: बैठो निषादराज, सब कुशल तो है?
1: आपके चरण कमल के दर्शन से मैं सकुशल हूँ। परिवार सहित मैं आपका सेवक हूँ। कृपा कर मेरे श्रृंगवेरपुर में पधारे, जिससे आपकी कृपा से मेरी प्रतिष्ठा में और वृद्धि हो।
2: सखे, तुमने सच कहा है, किंतु पितृ आज्ञा बरस चारि दस बासुबन मुनिप्रत बेशु आहारु, ऐसी दशा में ग्राम बासु नहीं उचित।
0: निषाद राज को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने श्री राम के लिए सब प्रबंध कर दिया। श्री राम ने संध्या आदि से निवृत्त होकर शयन किया। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिव ही सोवन मृदु बानी। कछुक दूर सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। निषाद राज लक्ष्मण के पास आ बैठे और कहने लगे,
1: लक्ष्मण जी, इंद्र महल से भी अधिक सुहावना अयोध्या का राजमहल है। वहां की सुख सुविधाओं में सोने वाले सीताराम रति और कामदेव के दर्प को अपनी शोभा से मर्दित करते थे, वही आज सोवत महे विधि पामन के ही।
3: निषाद राज, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। सखा समुझियस परिहरि मोहू,

0: सिंह रघ पीर चरण रथ हो,
1: आप यथार्थ कहते हैं। अरे बातों ही बातों में सगड़ा हो गया।
0: तार्थ कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई।
2: तात सुमंत, आपने धर्म के सारे सिद्धांतों का संचय किया है, आप भली प्रकार जानते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, मेरी ओर से आप पिताजी के चरण स्पर्श कर कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करें और उनसे निवेदन करें कि मेरे लिए किसी बात की चिंता में ना करें। आपका भी यही कर्तव्य है, आप हम लोगों की चिंता में पिताजी को कोई कष्ट ना होने दें।
0: केकेई से प्रतिज्ञा करते समय उन्हें कष्ट नहीं हुआ?
2: लक्ष्मण, ये बड़ी अनुचित बात है। सुमंत जी, आपको मेरी शपथ है, लक्ष्मण का संदेश वहां जाकर न कहना।
0: सीता जी वन के दुखों को न सह सकेंगे, इसलिए सीता जी के अयोध्या लौटाने का उपाय आप और हम करें, ये भी महाराज का आदेश था। अन्यथा उन्होंने कहा था कि मैं उसी प्रकार नहीं जी सकूंगा जैसे जल के बिना मछली।
2: सीते, यदि तुम अयोध्या लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन तथा परिवार सबकी चिंता मिट जाए।
3: प्रभु, आप करुणा सागर और परम विवेकी होकर ऐसा कहते हैं? क्या तन को छोड़कर छाया और सूर्य को छोड़कर प्रभा कहीं विलग रह सकती है?
0: किंतु राजकुमारी जी,
3: बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने हु सुखद न लागा। अगम पंथ बन भूमि पहारा, कर के हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणुपति संगा।
0: मैं अयोध्या लौटकर कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? महाराज को क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा?
3: सासु ससुर सन मोरे होते, बिनय करबि परि पाए। मोर सोच जनि करई कछु, मैं बन सुखी सुभाए। और फिर प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, बीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग शमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिय जनि भोरे।
4: सीता की शीतल वाणी सुनकर मणिहीन सर्प की भांति सुमंत्र व्याकुल हो गए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए।
2: प्रिय केवट, गंगा पार जाने के लिए नौका ले आओ।
5: नहीं महाराज, तुम्हार मर्म में जाना।
2: क्या कह रहे हो तुम?
5: चरण कमल रज कहूं सब कही, मानुष करनी मूरी कछु एही।
2: कहां चरण और कहां जड़ी?
5: जी हां, जानता हूं आपके चरण स्पर्श से शिला सुंदरी बन बैठी थी और लकड़ी तो पत्थर से भी कोमल है। यदि मेरी नौका मुनि की स्त्री बन बैठी तो मैं तो लुट जाऊंगा। यही तो मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण का सहारा है, और कोई दूसरा रोजगार भी तो मैं नहीं जानता। मेरी तो केवल इतनी ही विनती है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो। मोहि राम रावरी आन, दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहूं लखनु, पै जब लगिन पाए पखारी हो। तब लगिन तुलसी दास, नाथ कृपाल पार उतारी हो।
2: सीते, लक्ष्मण, देख रहे हो केवट की चतुराई? अच्छा भाई, वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जा जल्दी कर, जल्ला पैर धोले और शीघ्र पार उतार।
4: केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। पद पखार कर

0: जलपान करके केवट ने परिवार सहित अपने आप को धन्य माना, फिर प्रसन्नता पूर्वक श्री राम को गंगा पार ले गया।
1: लीजिए महाराज, अब आप गंगा पार आ गए।
2: अरे, हमने इसे कुछ भी नहीं दिया।
3: ये मणियों की मुद्रिका ही इसे दे दो।
2: केवट, पार की उतराई ले लो।
1: नाथ, आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बन भली भूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा।
3: नहीं केवट, तुम्हें उतराई ले लेनी चाहिए।
4: अरे, तुम अपनी मजूरी लेने से इनकार कर रहे हो, कैसे केवट हो तुम?
1: मैं तो केवल प्रभु के चरणों में भक्ति चाहता हूँ।
2: तथास्तु।
0: इसके पश्चात श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, सीता और निषाद राज के साथ तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। त्रिवेणी में स्नान कर श्री राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। मुनिवर ने श्री राम जी के दर्शन कर अपने आप को धन्य माना। रात को आश्रम में ही विश्राम किया। प्रातः काल प्रयागराज का स्नान कर मुनि को सिर नवाकर वे वहां से चल दिए। फिर उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समस्याम। श्री राम जी ने निषाद राज को समझा बुझाकर विदा कर दिया। वे सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आगे चले।
1: अरे आओ आओ, उनके दर्शन कर इसी क्षण नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लो।
5: भद्र, कैसी शीतल छाया है। हमने नरम घास और कोमल पत्ते बिछा दिए हैं, आप लोग थक गए होंगे। खबर यहाँ बैठकर थकावट दूर कर लीजिए,
1: फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे।
2: आप लोग व्यर्थ कष्ट न करें, आपकी कृपा के लिए हम अनुग्रहित हैं।
5: यह लीजिए, आपके लिए शीतल जल है, आचमन तो कर लीजिए।
2: सीते, लक्ष्मण, जल ग्रहण करो।
3: धन्यवाद।
1: चलिए, हम आपके साथ आगे तक चलेंगे।
2: नहीं नहीं, आप लोग हमारे लिए कष्ट न करें, कृपया लौट जाइएगा।
3: चलो, आओ आओ, चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो। सखी, तुम कैसे माँ बाप है इनके, ऐसे कोमल बालकों को वन में भेज दिया।
6: विधाता की कठोरता को कौन दोष दे सकता है भला।
3: कितने सुंदर है ये।
6: वाह,
3: इन्हें देखकर थके नारी नर प्रेम प्यासे मनहुम्रे के मृग देख ही दिया से।
6: आओ चले, इनके पास चलकर इनसे कुछ पूछें।
3: चलो। राजकुमारी, विनय हम करहीं, तिया सुभाए कुछ पूछत डरहीं।
6: स्वामी, अभिनय क्षम भी हमारी, बेलगु न मानव जानी गवारी।
3: कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहूं को आही तुम्हारे।
7: सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे।

0: एहि विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत जाहि चले देखत बिपिन सिय सौमित्र समेत आगे राम लखनु बने पाछे तापस बेख विराजत काछे उभय बीच सिय सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। इसी प्रकार देखत बन सर सैल सुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए।
1: हे मुनिनाथ, आप त्रिकालज्ञ हैं, आपकी हथेली पर सारा संसार बेर के समान है। माता कैकेयी के व्रत निर्वाह के लिए पिता की आज्ञा का पालन और भरत जैसे भाई का अकंटक राज तिलक हो, इस कारण मैं वन आया हूं। यहां आकर आपका दर्शन हुआ, वह मेरे पुण्य का प्रभाव है।
2: साधु साधु, राम आप रघुवंश के पताका हैं। ऐसा कहना आपके लिए सहज और सरल ही है। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाए कृपा निधान की, जो सहस शीसु अहीसु महिधर लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निश्चर अनी।
1: मुनिवर, यह सब आपके पुण्य प्रताप का ही फल है, मैं तो आपका।
2: आपके संबंध में और क्या कहूं, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह, जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु नचावनि हारे, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम्ही को जानि निहारा, सोई जानै जहि देव जनाई जानत तुम्ही तुम्हें हो जाए। राम देख सुनी चरित तुम्हारे जड़ मोहि बुध हुए सुखारे, तुम जो कहो करो सब साचा जस काछिए तस चाहिए नाचा।
1: मुनिवर आज्ञा दें, मैं कहां वास करूं।
2: ए राम, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहां रहूं, परंतु मैं ये पूछते सकुचाता हूं कि जहां आप ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। अधिक क्या कहूं, जस तुम्हार मानस विमल हंस ने जी हां त्यासु मुक्ताहल गुन गन चुनई राम बसहु हिया तासु, स्वामी सखा पितु मात गुर जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिन कहीं बसहु सिय सहित दो भ्रात।
0: महामुनि वाल्मीकि ने श्री राम जी की सर्वव्यापकता और उनके व्यास से सत्पुरुषों की महिमा का विस्तार से वर्णन कर चित्रकूट की अपरिमित महिमा का भी बखान किया। श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी समेत चित्रकूट पर निवास करने लगे। इधर तो श्री राम जानकी जी और लक्ष्मण जी वन में निवास कर रहे हैं, उधर जिस प्रकार सुमंत्र अयोध्या आए वो कथा सुनिए।

0: जी कुछ कहना चाहती थी।
1: हाँ।
0: उनकी वाणी अवरुद्ध थी, स्नेह से शिथिल, वे कुछ कह नहीं पाई।
2: हे सुमंत, कृपालु राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, मेरे स्नेही राम कहाँ है, मेरी प्रिय पुत्र वधु जानकी कहाँ है, राम कौशल्या श्रवण कुमार की कथा तो तुम जानती ही हो, वही शाप अब मुझे लगा है, वही शाप मुझे लगा है। राम के बिना इस अवस्था में कैसे मैं जीवित रह सकूंगा, हमें धिक्कार है। प्रेम का प्रण निभाने वाले इस शरीर को धारण करके ही क्या करूंगा।
3: और रघुनंदन प्राण पीते तुम बिना जिया बहुत दिन बीते, जानकी लखन रघुवर जलधर आराम आराम
0: महाराज महाराज महाराज।

0: राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुर धाम। प्रातः काल होने पर मुनि वशिष्ठ ने समयानुकूल सब प्रकार का इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रख दिया गया। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए थे, उन्हें बुलाने के लिए दूत भेज दिए गए। उनसे कह दिया गया कि अयोध्या का किसी भी प्रकार का कोई समाचार उनसे न कहें। किसी प्रकार दोनों भाई अयोध्या आए। नगर में प्रवेश करते समय अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछते, उनके मन में भय और विषाद व्याप्त है। पुत्र को आया जान कैकेयी हर्षित होकर दौड़ी और दोनों भाइयों को राजभवन में ले आई। भरत को उदास देखकर पूछने लगी,
1: हमारे नैहर में कुशल तो है?
2: हाँ, सब कुशल है। पिताजी कहाँ हैं? सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी तथा प्रिय भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं?
1: तात, बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछु काज विधि बीच बिगारू, भूपति सुरपति पुर पगुधारू।
2: तात, समय में आपका दर्शन न कर सका और आप मुझे राम जी को सौंप भी नहीं गए। माँ, पिताजी की मृत्यु का कारण तो बताओ।
1: बेटा भरत, राजा से मैंने दो वर मांगे थे, राम 14 वर्ष का वनवास करे और तुम्हारा राज तिलक हो। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, परिणाम

0: स्वरूप राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए। तात, राव नहीं सोचे जो
1: पापिन सबहि भांति कुल नासा। यदि तुम्हारी ऐसी ही कुरुचि थी तो पैदा होते ही तुमने मुझे मार क्यों नहीं डाला?
0: बेटा,
1: पेड़ को काट कर पत्तों को सींच रही हो। तुमने तो मछली के जीवन आधार पानी को ही उलीच दिया। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी, तू जननी भाई विदेशन कछु न बसाए।
0: बेटा,
1: हाय जब तय कुमत कुमत जी अठयाऊ खंड खंड हुई हृदय न गय, परमागत मन भय नहीं पीरा करिन जी मुह पर न कीरा। पर मुझे तो आश्चर्य इस बात पर होता है कि भूप प्रतीत तोरी किमिकी नहीं, मरण काल विधि मति हर लीनी।
0: लेकिन बेटा, मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मैं तुम्हारी मंगलाकांक्षिणी हूँ।
1: सच पता तू कौन है? सारे संसार के जीव जंतु जिस राम को प्राण से अधिक प्रिय मानते हैं, वो भी तुझे अप्रिय जान पड़े। जो हसी सो हसी, मुंह मसिलाई आंखें उठी उठी बैठ ही जाए।
0: बेटा,
2: तू रोक भी।
1: कई कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी तब है काहे न बाझा। धिक्कार है मुझे।
0: तुम ठहरे था
1: जननी, जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ बहुसुरपुर जारे, जे अघ तिय बालक बध कीने, मीत मही पति बाहुर दीने, जे पातक उपपातक आही, करम बचन मन भव कवि कही, ते पातक बोहि हो विदाता।
0: बेटा,
1: जो यहु हो मोर मत माता, जे परि हरि हरि हर चरण, भजहि भूत गन घोर, ते कई गति बोहि देउ विधि, जो जलनी मत मोर।
0: विधु विष चवे स्रवे हिमु आगे, होई बारी चर बारी बेरागी, भये ज्ञानु परु मिटे न मोह, तुम्हार राम ही प्रतिकूल न हो।
3: अस कही माँ तू भरत हिय लाए, थन पय स्रवही नयन जल छाए, करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गई सब राती। सवेरा होने पर मुनिगण राज परिवार के लोग आदि एकत्र हुए। फिर नृपतनु वेद विदित अनहवावा, परम विचित्र विमानु बनावा, गही पद भरत माँ तु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी, यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी, सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन्ह भरत दस गात विधाना। सब क्रियाओं से निवृत्त हो जाने पर राजसभा बैठी। मुनि वशिष्ठ आदि ने भरत को अनेक प्रकार से सांत्वना दी और समझाया।

0: वत्स, आओ मेरे पास बैठो। सुनो भरत भावी प्रबल, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, अस विचार के ही देइए दोसु, व्यर्थ का ही पर कीजिए रोसु। तात विचार करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृप नाही।
1: लेकिन
0: भरत, राजा को अपने वचन प्रिय थे न कि प्राण, उनके प्रिय वचन का पालन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है।
1: आप कह तो रहे हैं पर
0: भरत, सबकी यही सम्मति है कि राज तिलक उसी का होता है जिसे पिता टीका दे। कल्याण समझकर मेरी बात मानो। हाँ, जब राम लौट आए तब तुम उन्हें राज्य सौंप देना और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना।
2: हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा का आदर करना चाहिए और उसे कल्याण प्रद मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति समझकर दुख को त्याग देना चाहिए।
1: आप लोग मुझे वही शिक्षा दे रहे हैं जिसमें मेरी भलाई है, ये मैं भली भांति जानता हूं, पर मुझे संतोष नहीं हो रहा है। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। शोक समाज राज कहि लेखें, लखन राम सिय पद बिनु देखें। आप सब आज्ञा दें, मैं राम के पास जाऊं, मेरा कल्याण इसी में है।
2: बात मानो बेटा, तुम पर ही सबका ध्यान है, उठो।
0: वत्स, कौशल्या की बात मानो, वे ठीक कह रही हैं। उठो और पश्चाताप मत करो।
1: मेरा जन्म तो रघुनाथ को वन भेजने के लिए हुआ था, अभागा मैं झूठ मूठ ही पछता रहा हूं। किंतु आपने दारुण दीनता, कहूं सब ही सिरुनाई, देखें बिनु रघुनाथ पद जिय कै जरन न जाए। आन उपाव मोह नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिन बूझा। एक ही आंक इहई मन माही, प्रात काल चलि हऊं प्रभु पाही।
3: धन्य धन्य हे महाराज भरत, धन्य धन्य हे महाराज भरत।
1: पंचो, आप लोग मुझे आज्ञा और आशीष दें, इसमें ही मेरी भलाई है। मेरी विनती सुनकर मुझे अपना मान राम अयोध्या लौट आएंगे, मुझे राम का भरोसा है।
3: महाराज भरत की जय। महाराज भरत की जय।
0: भरत जी का निर्णय सुनकर सबके मन में अपार प्रसन्नता हुई, सभा विसर्जित हो गई। सब लोग अपने अपने घर जाकर प्रातःकाल यात्रा की तैयारी करने लगे। कहां ही परस्पर भा बड़ काजू, सकल चले कर साजे ही साजू। जे ही राख ही रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनी मारी। प्रातःकाल होने पर भरत जी ने मंत्रियों को बुलाया

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

बाल कृष्ण की प्रीत में तन्मय हर गोपी दिन रात कान्हा के ही सपने देखती है। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया ग्वाल बाल संग गोकुल में गैया चराते, बंसी बजाते, माखन चुराते और गोपियों संग रास रचाते हुए मनमोहक लीलाएं करता है। यमुना किनारे सांझ सकारे जब गोपाल मुरली की मधुर मधुर धुन छेड़ता है, तब गोपियां सुध बुध खो बैठती हैं। कृष्ण भक्त गोपी राधा नंदलाल से प्रीत तो कर बैठी, मगर उसे चिंता सताती कि कहां त्रिभुवन का स्वामी सर्वव्यापी नारायण और कहां वो ब्रज की एक साधारण सी गोपी। वो ध्यान में मग्न बंसी भजैया से पूछती रहती, हे गोविंद बांके बिहारी तू ही बता कैसे निभेगी प्रीत हमारी।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।